0: Animal Lines Life Insurance. Khule Rajiyon.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धारिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज